पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो १ बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले बिहान 6 बजे